याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मेनव मेकी दे अपगे स्वामी जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा।